0: थैंक यू डॉक्टर साहब,
1: शुक्रिया चीमा साहब, ताडा भी धन्यवाद जी, श्रोतियों ताडा भी धन्यवाद, थैंक यू जिहड़े सुणदे।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तो हाडे तक तो हाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचांदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप दा नंबर नोट कर लवो 732 874 3259

वारीवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबोलाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ये के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईया ने, नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पुढ़े इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारयां वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ।

0: ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर
1: सत श्री अकाल शुक्रिया धन्नवाद नमस्ते आदाब सारे सत्कारयोग वीर भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी और प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं तुहाडे नाल रल मिल के और अज दे प्रोग्राम दे विच आपां कुछ प्यारे प्यारे गीत गाने सुणांगे ते गाणियां तों बाद फिर आपां चलांगे जी खबरां वल ओह खबरां होणगियां दुनिया दियां अजकल जो कुछ वापर रहा दुनिया के उपर किनिया क जंगा लगिया हुई उन्हों की सिचुएशन आ अमेरिका की सियासत बारे गल करांगे इंडिया की सियासत बारे भी गल करांगे कि उत्थे की हो रहा सो बहुत सारा कुछ मटीरियल लैके लाल सिंह चीमा हुणी पहुंचे पुजणगे जी उस तो बाद शायद डॉक्टर साहब गुरदीप सिंह संधु साहब भी अपने नाल रलणगे और दो घंटे का प्रोग्राम अपा लेके आ गए हैं दिल दी आवाज साडे प्रोग्राम का नाम हैगा जी दिल दी आवाज फोन नंबर हैगा जी 732-874-3259 इहदे उपर मैसेज करना होवे ते तुसी वट्सएप दे उपर भी जाके कर सकते हो रेगुलर कॉल दे उपर भी मैसेज कर सकते हो सो सारयां दा शुक्रिया धन्नवाद सो दोस्तों इदा करिए कि अपने दोस्तों मित्रा नूं भी दस्या करो कि प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडी सेवा दे विच हाजर है ताकि होर भी स्रोते जिहड़े अपने नाल जुड़ सकन तो डाउनलोड ऐप नूं जिहड़ा हैगा www.pravasradio.com ते उपर तुसी जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप नूं ओह करा सकते हो अपने दोस्तों मित्रां भैण भरावां नूं क्योंकि साडे प्रोग्राम म्यारी हुंदे आ जी बहुत म्यारी हुंदे आ वर्गल नहीं हुंदा और सच्चाई ते असी हमेशा पहरा दिंदे आ सच कहण दी हिम्मत रखदे आ चाहे ओह अमेरिका च होवे चाहे इंडिया च होवे क्योंकि जदों मफाद ही किसी चीज़ दा नहीं तो फिर सच बोलण च कोई हानि नहीं है असी बोलदे ही सच आ साडे जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे आ सच दे आधार दे उपर हुंदे आ सो वीरो ते भैणो भरावो प्रोग्राम नूं सुनिया करो और इनू शेयर भी कर दिया करो जे तुहाडे हिस्से च कोई गल आउंदी है बड़ी मेहरबानी लोग गीत सुनदे आ जी मिस पूजा ते गीता जैलदार लो जी तुहाडी सेवा विच आपां पहला गीत लाता जी।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-2259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल।

0: एम पर वाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लो 732-874-2259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज़।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पेरा है ना या घोड़ा बोला या चतुरा बोला
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फसत जात हम मरत जात।

0: इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM पर वाज रेडियो। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 एंड 856-397-0301 8553-397-0301। तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह ठक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज पर वाल रेडियो दे उते।
1: हेलो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके तुहाडे नाल हाजिर हो गए जी। न्यूयॉर्क स्टूडियो तो, न्यूजर्सी तो, मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नू जी। अज आपां कुछ गीत सुरिंदर शिंदा भाजी होना दे सुनांगे ते पुत जटा दे पहला गाना तुहाडी सेवा विच। उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ओह खबरां दा कुछ करांगे, फिर डाक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा। दो घंटे दा प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए हां जी। लो जी, पेश है पहला गीत।

छिड़का के वे जान जान लंगे साडी बीही नू चढ़ा के वे लथे ओदा सुहाग दा वे कोका लथे ओदा

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते किया गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया

वार यू आर। वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ये के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दिया सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तों दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तों दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होने वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।

0: ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ हार्ड यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ओनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स
1: जी और रल मिल के इस प्रोग्राम का आनंद माणते हैं। पहला गीत बलकार सिद्धू का पंजे पीर मनावा।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो, ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़े।

0: Whitney Thornton de Nisenda Shindas.
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई
2: आप देखो ना जी कितनी सोनी जन लेके आया है
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया वो ताली देता हूँ वाले
2: हाँ भाई
1: लाखों सिंधे का नवा गाना और सिंधे का लाई भाई जितना बहुत बैगा बैगा हो जाए
2: माल को ला देने हम पहली लड़े थोड़ा
1: भाई वाह वाह वाह

खूबसूरत स्रोते हो। ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके ताडे नाल रूबरू हुन्ने आ ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओ दिंदे आ जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे आ क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे आ जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंग्लिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते हैं सो टाइम मिले ते वो प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी देते फेसबुक ते लाइव भी होंदे सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दी कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चुनने कोशिश करी दे कि कोई वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच ਵੈਗਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋ ਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

मिठे बोलन अगले आप दे दिला ते राज करना ये है दी परवाज रेडियो फ्रेंकफर्ट।

0: ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो पीआर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ओनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल और असी इस शहीदी पंद्रवाड़ा जो दिसंबर दा आखरी दो वीक है ओदे संबंध विच वापरियां सिख इतिहास दियां घटनावां दा जिक्र कर रहे हां और उन्हां घटनावां दा जिक्र करदे होए कल असां इह गल कही सी के आनंदपुर साहब दे किले तो निकलन दे कारणां दी गल व्याख्या कीती सी असी और एक सज्जन ने भी कहा सी भी ओदे होर भी कारण हो सकते ने या महासंघ दे संबंध जदों असी गल कीती सी उन्होंने भी कहा सी भी होर कारण हो सकते ने वैसे क्योंकि मैं ते इस गल दा वैसे ही हामी हां कि हर गल तर्क संगत होनी चाहिए कि हो सकती कि नहीं हो सकती या एदे विच कुछ होर भी हो सकता है
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: हां जी जब तक असी वन साइडेड होके किसी गल नूं विचारदे आं भी मैं ही ठीक हां उस वेले असी गलती कर रहे हुंदे आं
2: बिल्कुल
1: और इस गलती दे संबंध विच कल मैं उस तों बाद फिर होर भी इतिहास दी फरोला फराली कीती और उस दे विचों कुछ होर एहो जिहियां बड़ियां अचंभे वालियां गल्लां निकलियां कि जिहड़ियां मैं समझदा भी साडा सिख इतिहास अगर सुनेगा तो एकदम अचंभा होएगा या मन्नण नूं तैयार नहीं होएगा
2: जी
1: एक सज्जन ने इतिहास दे विच लिखिया आया भी साडे कोल जिस तरह नील नदी दी घाटी नील नदी है ना
2: जी जी बिल्कुल
1: नदी दा 4000 साल पुराना रिकॉर्ड साइंसदाना ने इकट्ठा कीता होया कि एदे च कदों चढ़ा आउंदा है कदों उतरा आउंदा है किस किस तरह एदी जिहड़ी क्रिया है ओ चलदी है नील नदी जिहदे च जहाज भी समुद्री जहाज भी चलदे आ
2: जी जी मिस्र दे विच जी
1: सुनिया होना ओदे बारे ज्यादा जी इसे तरह करके एक सज्जन ने कल उस फरोला फराली दे विचों मैनु ए मिलिया भी लिखिया भी साडे कोल पिछले 200-300 साल दा रिकॉर्ड मौजूद आ कि उस समय दे विच जेड़ा समा असी दिसंबर दे दिनां दी गल कर रहे हां उस समय दे विच उत्तरी भारत दे विच किते भी हड़ नहीं सी आउंदे किते भी नदियां इन्नियां भरियां होईयां नहीं सी हुंदियां जिस तरह दा बिरतांत सिरसा नदी दा सिरज दित्ता गया है
2: जी
1: इहदा मतलब इह आ भई जे सिरसा नदी उस वेले चढ़ी हुई नहीं सी जे ए गल कही जावे भी सार्थक नहीं हैगी तां फिर अल्टीमेट शहीदियां ते होईयां ने ना
2: बिल्कुल
1: ओहदे पिछे सानू कुछ होर लभना पएगा सानू कुछ होर वेखना पएगा।

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन दिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पगलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: आप स्विच अपडेट्स के लिए
0: तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

चौखट में बुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कैसे यमला अगला दीवाना हो रहा।

छिड़का के वे जान जान लंगे साजी दी नू चिड़ा के वे लथे ओदा सुहाग दावे कोका लथे ओदा।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पेशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तो जबर अगे चुकया ते ना ही उन्हें अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा पहाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियों के परिवार ते बच्चों ते भी जबर किया जाता है ताकि मानसिक तसियां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हों की भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। मैं उन्हों का गीत नहीं, मेरी मौत तो ना, मेरी मौत से ना रोयो, मेरी सोच नू बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उदे ते उदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उदी बोली नू लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उदी बोली ने जां उदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलो ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटी दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 उन्हां नूं हजूर साहिब तों एक चिट्ठी आई जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणां ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओ लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके। हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है, भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन दिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पग दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: आपस विच
0: ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: दूंगा और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला सभी जी सुन रहे हो मैनू

मुलारे में मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं जाके यमला पगला दीवाना

जुल्फ के घूंघट में मुकड़त पसीना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगातीना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कत यमला पगला दीवाना हो रब।